नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चल चलो मार्ग गोविंद मिटे पा।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसल तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

0: गुरु दे शब्द दी विचार दी असिस्टेंस दे नाल गाइडेंस दे नाल इस देही नू काढ़न, इस नू सही शेप च लिया, इस नू सही कंडीशन च लिया। सो उपदेश नंबर एक, एक देही दे लेवल ते वर्क करना है कि इस देही नू सोधना है।
1: ए मन देही सोध तू गुरु शब्द विचार।

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो ये बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ए इतनी शुद्ध होवे, इतनी शुद्ध होवे जिस तरह के केसर हुंदा है, कंगू केसर नू आखदे, पूजा पाठ आदि दे विच समग्री दे विच केसर वरत्या जांदा है, केसर नू शुद्ध मनदे हन। केसर जितनी शुद्ध एक काया होवे, वो काया केसर जितनी ताही शुद्ध हो सकती है अगर इसकी शुद्धताई सुचम सफाई जो है वो रखी जाए। इतनी ए शुद्ध पवित्र होवे कि इसके पास बैठिया इसदिया जड़िया वाइब्रेशंस हैं वो बहुत प्यारियां, बहुत शुद्ध हो। कई बंदियां दी काया ही ऐसी हुंदी है कि उन्होंने नजदीक बैठ के तुसी डिस्टर्ब हो जाओ, नजदीक बैठ के डिस्टर्ब हो जाओगे, सिर्फ और कोई गलबात ना करनी, पर जस्ट अफेक्ट ऑफ द बॉडी इज सो हैवी, क्योंकि बॉडी दे अंदर जो बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़िया है वो चल रहा है। जेडे अशुद्ध ख्याल हन, बुरे ख्याल हन, वो बॉडी नू भी अशुद्ध करते हैं, अते बॉडी तो उस तरह दी फिर बाहर जो वाइब्रेशन निकल दिया हैं उनका कोई साढ़े वाल अखियां पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन इन्हां दे विच शुद्धता ही नहीं है। कोई साढ़े वाल स्टेयर करे तो असीं अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिंदे हां, ये अखां क्योंकि शुद्ध नहीं हैं, इन्हां अखां च प्यार नहीं है, इन्हां अखां दे विच मिठास नहीं है, इन्हां दे विच दृष्टि दे विच विकार है, बुरियाई है, गंदगी है। तो ये अखां ही जदों असीं किसे वाल करदे हां दे मेक द अदर परसन फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि देही शुद्ध नहीं है। एक पासे बाणी च तरसदे हन कि गुरु बाबा जी साडे वाल निगाह करो, साधु महापुरुषां नू लोग कहिंदे हन साडे वाल अखियां करो, साडे वाल देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, किसे दा साडे वाल देखना सानू बॉदरिंग हुंदा है, किसे दा साडे वाल देखना सानू शांत कर दिंदा है। अखां ते ओही हन, देही ते ओही है, किसे दियां अखियां इतनियां शुद्ध हो चुकियां हन कि उन्हां दे विचों रब अते उस दियां वाइब्रेशंस मिलदियां हन, किसे दियां अखियां अजिहियां हन उन्हां दे विचों कुछ होर ही दिसदा है। देही नूं शुद्ध शुद्ध करो, पवित्र करो। कंगू की काया कहिंदे काया नूं केसर वर्गी शुद्ध कर दिओ। रत्ना की ललता नंबर दो, ललता आखदे हन इस जीव नूं जबान, कहिंदे ये जिहड़ी जबान है इस दे विच्चों जिहड़े लफज निकलन, बोल निकलन, वो इस तरह होण जिस तरह रतन हीरे मोती जवाहरात निकल रहे होण। ये देही दी साधना है। हुण आप सारे ही अपने आप नूं सवाल कर लो कि जदों असीं बोलदे हां उदों की निकलदा है, की निकलदा है? रतन निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं, यानी वचन ही मोतियां वर्गे होन, मोतियां वर्गे वचन होन, ज्यूल्स निकलन साडे शब्दां दे विच्चों, साडे वचनां दे विच्चों। कोई इंतजार करे कि एक कुछ बोलन, कई दफा असीं फड़प होए पए होने पिए बोली क्यों जा रहे हैं। इस करके बाबा जी आखदे ने बहुत घट बोलो, बहुत घट बोलो ताकि दूसरे ईगर होणगे तुहानूं कुछ सुनन दे लई। अते एक अभ्यास एक करो कि जदों कोई मन च थॉट आंदा है बोलन लई कि सवाल करदे ने कि थोड़ा बोलन दा अभ्यास किवें करिए, थोड़ा बोलन दा अभ्यास किवें करिए, उसका एक ढंग है कि जदों तुसी बोलन लगे हो, कुछ कहन लगे हो, उदों मन च एक थॉट सोच लो पहला कि जे अगर मैं ना बोलना तो फिर की फर्क पै जाएगा, वट डिफरेंस इट विल मेक इफ आई डोंट से एनीथिंग। आप जी देखोगे कि तुहाडी 75% जो है बोलन की जरूरत जड़ी है वो घट जाएगी, नहीं रह जाएगी। देर इज नो नीड टू कीप ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम। साइलेंस भी डिवेलप करनी चाहिए है, बॉडी साड़ी नू साइलेंस भी दी भी जरूरत है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना, ये भी साधना है देही दी।
बहुत ज्यादा देखना भी वो भी गलती है। इस करके ये भी अभ्यास करना चाहिए है कि हर वेले कुछ ना कुछ देखते ही नहीं रहना चाहिए। जदों देखने की जरूरत है उदों देखो। हुण गुरुद्वारा साहब दे विच अखां बंद करके बैठने की आदत पानी चाहिए, क्योंकि इत्थे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर असीं आले दुआले देखते रहिए, कौन आउंदा है, कौन जाउंदा है, किसी ने की पाया, किसी ने की नहीं पाया। उहदे नाल माइंड एक्टिवेट हुंदा है, फिर माइंड अपनी जजमेंट पास करता है। अखियां नूं भी बंद करन दा एक अभ्यास है कि तुसीं कल्ले बैठे हो और अखां बंद करके बैठ जाओ। और जे जदों कुछ सुनने की नहीं जरूरत उदों बिल्कुल ना सुनो, जदों कुछ कहन की नहीं जरूरत उदों कुछ ना कहो। जदों भी बोलने नूं दिल करे, कुछ कहन नूं दिल करे, अपने अंदर यह सवाल लियाओ कि अगर मैं ना कहां तो फिर की फर्क पै जाएगा? कोई फर्क नहीं पाएगा। सो थोड़ा बोलना, देही नूं सोधना। महाराज जी कहिंदे रत्ना की ललता है, ताकि जदों बहुत थोड़ा बोलोगे जिहड़ी एनर्जी वेस्ट हुंदी है बोलण दे विच उह जिहड़ी है उह बच जाएगी। अते बहुत सोच समझ के बोलोगे ते कहिंदे हन फिर तुहाडा बोलना इस तरह होएगा जिवें तुहाडी जबान दे विचों बोलां दे विचों रतन जवाहरात निकल रहे हो, हीरे निकल रहे हो। रत्ना की ललता, कंगू की काया देही नूं इतनी शुद्ध इतनी प्यारी होवे के इतनी स्वच्छ होवे के एक केसर वर्गी होवे। जबान जड़ी है कहिंदे ओ इस तरह दी होवे जिस तरह ललता, इस तरह दी होवे जिस तरह इस दे विचों मोती किर रहे होन। रत्ना की ललता अगर वास तन सास, तन दे विचों जिहड़ा श्वास आ रहा है अते जा रहा है, अगर वास एक जंगलां च दरख्त हुंदा है जिसकी बड़ी अच्छी सुगंधी हुंदी, कहिंदे हर श्वास दे विचों कहिंदे वाहिगुरु परमेश्वर दी याद आवे ते उसकी सुगंधी आवे। हर श्वास दे विचों वाहिगुरु दी याद दी सुगंधी आवे। अगर वास तन सास, 68 तीर्थ का मुख टिक्का, कहिंदे फिर ओ बॉडी इस तरह दी बन जाएगी जिदा 68 तीर्थां दा टिक्का उसके मत्थे ते लगा है। भाव उस इंसान नूं अगर कोई देखेगा तो इस तरह लगेगा कि 68 तीर्थां दा ही दर्शन हो गया। 68 तीर्थां दा दर्शन उसके शरीर नूं देख के ही हो गया। दर्शन भेट तो होत निहाल, 68 तीर्थ का मुख टिक्का तित घट, कहिंदे इस तरह की जिहड़ी देही सोधी हुई है उस ही हिरदे दे विच वाहिगुरु वाली मत जिहड़ी है उसका विकास हुंदा है, वो खिड़दी है। तो सब तो पहला पॉइंट है अपनी देही नूं डिसिपलन च लियाना। खाना पीना बोलना चलना सुनना देखना इतार, आओ उस तो बाद क्योंकि महाराज जी ने आख्या भांडा धोए, इस भांडे नूं धोना है। यह शरीर रूपी भांडा है, अंदरों मैला होया पिया है, इसनूं साफ करना है, इस दीआं आदतां नूं साफ करना है। सो इस भांडे नूं योग बनाना है कि इस नाम रूपी अमृत पै सके। बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो, इस भांडे नूं धोवो सुगंधी दिओ, इस दे विच वाहिगुरु दे प्यार दी सुगंधी होवे, शुभ गुणा दी सुगंधी होवे, निम्रता दी सुगंधी होवे। इस भांडे च निम्रता होवे, इस भांडे दे विच केयरिंगनैस होवे, गिविंगनैस होवे, इस भांडे दे विच फॉरगिविंगनैस होवे, मुआफी होवे, इस भांडे दे विच तमाम किस्म दे गुण होण, इस भांडे दे अंदर श्रद्धा होवे, कहिंदे तां इह जाके भांडा शुद्ध हुंदा है। ते जदों इह भांडा शुद्ध हुंदा है तुसी एक लैवल ते कम कर लिया, हुण अगला है दूसरा लैवल, वो है माइंड दा। माइंड दी साडी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आखदे हन

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू, एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नू थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है, अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करदे हां कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसी ना किसी थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ। और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी, केड़ी

और मत सुन भजब दूणा खाए, खसमे करे बराबरी फिरकार नजर पाए, वजह को आए अगला मोहे मोह पाना खाए, जता जता खामना तुझके साबास, नानक हुकुम न चले।

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चल चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा,

उनका वचन बसे जी ना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई न साके जाले, खमाल अंगी एतन आसरी, शब्द सर्वन करो तिंता ले।

अजय भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझ गया कि कोई नहीं वेचना, पर अजय भी कोई टक रही है, मना जरा खैर। फिर तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह तेरे फिर आऊंगा, फिर कन्ना आवाज केड़ी।

निर्जीवड़े आप परदेश इत पवे जंजाले राम साचा साहेब मन मथे ई फासे जमझाले राम मछली विचुन्नी पर नैन रुन्नी मछली आटे की गोली दे लाल चिच अपना आप खत्म कर देंदी है। हे मेरे परदेसी जीवड़िया केड़े बहना च रह रहे हैं आपको भाई जोगा सिंह ने सोचिया अजे भी कोई मेनू वेख रहे है थोड़े समय के बाद हूं अमृत वेला हो गया कुसरी भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मना कोई नहीं तेनू वेखदा ए तेरे अपने मन के ख्याल हैं हूं चढ़ चल चबारे भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चबारे से चढ़ गया जिते पौड़ियां खत्म हुई जिस वेले इतने पहुंचया तो सामने की तकिया प्यारी आसत इधर तो भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चढ़िया जाता है इधर दशमेश पिता आनंदपुरी का वाली अमृत वेले समाधि भी जुड़े हुए खुशी भाई अचानक ही नेत्र खोले सिख रुड़ गया काम कुंड काम के सागर रुड़ गया कोई है पहरेदार आ गया दयालु गुरु जी हुक्म करो हजूर कहने लगे खाकी वर्दी लियाओ लियांदी रेशमी वस्त्र पहन वाला माध गुजरी का लाल पंथ का दाता अज खाकी वर्दी पा लेंगे चांदी की चौक भी लियाओ लियांदी हजूर अंतर ध्यान होए पहुंच गए जिस वेले भाई जोगा सिंह पौड़ियां थानी उपर चढ़िया की तकिया सामने कोई सोने कद वाला हाथ भी चांदी भी चौब ते खाकी वर्दी पहन के सामने कोई सिपाही खड़ोता आपको सिंह भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मैं तो समझिया थी इस वेले कोई भी ना होगा पर एक कौन तो परसाया फिर सामने खड़ोते संतरी ने पहरेदार ने नेड़े होके कहा कि भाई तू कौन है आखो श्री भाई भाई जोगा सिंह नहीं बोल दूजी मेरी फिर पुछिया गर्दवी आवाज भाई जोगा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिता तीसरी मेरी पहरेदार ने कहा भाई बोलता क्यों नहीं तू कौन है तू किधरे कलगिया वाले का सिखता नहीं आखो श्री भाई तेरी शकल वाल वेखिया मैनू गुरु याद आंदा है पर तेरी करतूत वाल वेखिया मालूम होंदा है तू कोई शैतान है आखो श्री भाई भाई जोगा सिंह ने नजर नीवी कर दी पहरेदार ने कहा तेरे चेहरे के उत्ते गुरु की मोहर लगी हुई है फिर कलगिया वाले का सिख होके तू कितने आ गया भाई जोगा सिंह का नहीं बोलिया हम पहरेदार मुखातों के कहना की

0: क्योंकि यार रोई जाओ उतने तक जितने तक तेरे अंदर हाँ मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती। जोगिया की कही मैं महाराज मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आप के पाशा। हजूर कहने लगे बख्तिया खुश भाई जी हाँ श्री क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए हैं प्यार न आखो धन श्री गुरु गोविंद जी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें फिर नहीं देखना है मैरी जगह है जा चंगी है गंदी मंदी थाते सूरी रोशनी देता है गुरु की मेर हर थाते जाती अज थोड़े उत्ते भी पता है गुरु तहू भी दाता मिली जोगा वक्त आ गया पर भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया अदू कहने लगे बार कद महाराज रेखवा दे चवारे
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.